जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्कार दा संतार बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन वसना दे अरुपता बख्शनिया सामन सा संपन्न करनी यात्रा सफली करनी।

0: मेरे वर्गा गलती नहीं किया है, मेरे वर्गा ना संगत के दूने अपनी बात करते कर ले सानू नाड़ी छोटी बात ते कर ले पर सानू जीवन बात चंगा दे पर सानू साफ सुथरा दे दिला दे कदे अपने ते भरोसा ना करयो कदे अपनी मैं सानू ते की हुंदा प्लीज बीक ना पर भरोसा कदे अपने ते गुरु ते करयो अपने मेरा गुरु ते करयो जेड़ा मेनू संजारा तारा दे रहत रखा है मेनू पंडा कदा मेरा गुरु खड़ा समर्थ है मेरा जेड़ा मेनू संजारा बनिया जाप कर मिलेगा मेरा गुरु बड़ा समर्थ है मेरा गुरु बड़ा समर्थ है लाल जन्नत हमारे को बचाएगा सास संगत इस कर बचाएगा जेड़े बंदे कर जियो संगत मुदा रह जियो जेड़े गुरु दे नाल जुड़दे ने गुरु दे नाल जुड़दे ने जय रखत जय की हार बनी ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
1: ਕਵਨ ਰੂਪ ਦਸਤਾਨੀ
0: ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵਨ ਰੂਪ ਜਾਣੀ ਰੱਖੇ ਕੋ ਹਰ ਚਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਡਾ ਉਪਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਵਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
2: ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਾਧ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਬੈਠ ਕੇ

अति शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सो न राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की जौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के समूहन के होए होए बिताए है। मोरदी मदार कित असुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीरियो पिकांबर कित गन न परत हित भूम ही तय हो फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से वही बहुत लीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर त्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट वेश पोसती अनेक दानी वावत है। शीस कौ कह भय मल्ल जो पकाड़त अनेक दंड सोत न दंडौत अस डांग अति तीस कौ कह भय रुकी जो पे डार्यो रहे उर्ध मुख मान तेना मूड ने हो रायो अद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जागे कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आक को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो करत है। एक पाए ठंड सदा पन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव फूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठोर पास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैराकी बने कब हूँ सन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ बौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगा व्यवारी कहूँ डंडधारी हो लोगों ने भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार वर शीत काल कुंचर हो गदह अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ कंग धार डार डार फांस ठग।

के सहित जो पिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के गिये तो पिपायत अजाप देव भूतना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आगम जरत कतराण की परत कर पताल के बासी के भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावसी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई रास करहीम हुई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो। एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो। देहु राम सीत सोई पूजा निवाज होई मान सब एक पया नेको भ्रमाओ है। देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद।

जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सतरंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सतरंग न भामंग लेखंग बेखंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्धता।

रोग न शोक न भोग भुवंग जह जम पह किन्नर जाछ जुवंग नर नार नपुंसक जाह गिये गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भव भूत भविख भवान तुवंग जह अंडज सेतज जेर जंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बलि व्यन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र बितंग दुत चंद दिली सह दीप देई जय जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार।

गुरु गंग जय सोगन भोगन जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत गह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुध सिंध अधो मुख ताप तपे कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभ तज है एक चित्त कृपा निध को जब है ते व्या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम

न तात मात जात है, न पात चेहन वर्ण है, अदेघ सेघ भेक है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है, अद्वेघ है, अभेघ है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण हो पुराण नित नित कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सकै सुपाइये, जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए, न देह है न गेह है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है।

है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साहु कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न

नाव है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाव है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, न जन्म है, अभेग है, न दात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है।

खंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है। न सीत है, न सोज है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दयात है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न वेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है।

अदोख है अदाग है अक्षय प्रताप वेखिय। न करम है न धर्म है न धर्म को प्रभाव है न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ मोकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि न राधपि करंत सेव है सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस तपि विशेखिय बेअंत बेअंत वेद को करंत पाठ वेखिय। अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल मै।

हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार। जात पात न तात जा को मंत्र मात न मित्र। सर्व ठौर बिखे रमयो जह चक्र चिहन न चित्र। आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत। आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेव। सनक औसन केस नंदन पाव ही न सेव। जश किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग अपार। नेत नेत पुकार ही शिव सकरो मुखचार। सर्व सबत पतार के तर जाप ही जह जाप। आद देव गाद तेजन आद मूर्त ताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन। सर्व ठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीन। जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे। वैष्णंके बिखे विराजे शूद्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेक स्वरूप। रात दिवस न मध उर्द न भूम आकाश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन। तीर्थ यात्रण देव पूजा गोर के न अधीन। सर्व सपत पतार के तर जानिए जह जो।

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आद वृते चरासुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे।

युद्ध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण तमके अति चमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रंभक वर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विवरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुचर्जन हृदय नरा चंदर अमृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे प्रजारण श्रेष्ठ उवारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अश्व प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुर हारं विप्रतंते जोग जयंते मृज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्येजन अष्टभुजे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगुरु घमंकण शस्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सी मैखासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकर खण तुंद तवे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी सहस्र प्रकरखण आद नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोजन वृतन विमोचन सोज बिजोजन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन आद अनाद अगाध ऊर्धंग घंट का विराजे रुणझुण बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंग गोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुखूब राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न भज्जे रोहरण जय जय हो सी मैखासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंति दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैखासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते वृडराज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट

वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रधर खंड पितल तले अष्टायत बाहन भूल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल।

ली गर्भ कही ली ज्योत जति ली तुंद मते अष्टायत चमकण शास्त्र झमकण ता बिंदम कण आद वृते। डुक डुकी दमंके बाघ बबंके हुजा फरंके शोध गते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते। चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे। चंद्रानन चार नरक निवार वत दो धारे मुंड मथे जय जय हो सीम खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे। रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार विवरखण दुर्धरखण अतुल अमरखण धर्म धुजे। धूम राज विदुंसन श्रोण चुनसन सुंभन।

त्वा प्रसाद पाथड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जद बभूतन भय अनंत तव कहो जथा बद त्रैण तंत करता करी मगादर कृपाल याद वह भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जह नेद नेद सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सात सूरज सेवंत कई पलत सूरज

निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात बात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अविचल पार। जानी न जाए जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेक कहे नाम तास है कौन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। ऊर्ध्वं विरहत सिद्धं स्वरूप बुद्ध।

डरू बागे से रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी गुड चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलास कमाऊ गढ़ कांसी पूर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगेर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के ब्रदंगी तेरे गीत गायत है बकरी कंधारी गोर कखरी गिरदेजाचारी बौन के हरि तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र ते अता पिना

0: घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहु नानक गुर मंत्र दृढ़ाया।
1: घर सुख बसिया बाहर सुख

चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया है। मरण काल का त्रास निवरिया है। हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री असधु ज्यों।

कैठा सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संहरो।

साहेब फतेह सिंह जी पंज प्यारो चाली मुकतो सरबात्र शहीदो सिंह मरीदो सचियारो प्यारे नाम जपिया वंड छकिया धर्म हेत शीस दिते सिखी सिदक केसा स्वासा संघ निभाई तिना गुरमुखा गुरु दे प्यारिया सिंघा सिंघणिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहेब बोलो जे।

खुआर हुए सब मिलेंगे बजे शरण जो हो उड़के सभा मलेश की कर कूड़ा बसा डंगा बाजे भले गान है कल अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र मुक्ते स्वयं सर्वदा सर्व युग दुकाल दयाल स्वरूप सदा अंग संग।

0: सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम
1: भगतना के मन विश्राम राहो
0: प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभु के सिमरन दुख न बसे
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभु के सिमरन दुख न डरे
0: प्रभु सिमरत कट विघ्न न लागे
1: प्रभु के सिमरन आनंद जागे
0: प्रभु के सिमरन भव न व्यापे
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु का सिमरन साध के संग
1: सब नाना न करंग
0: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नो निर्भय
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्भुत
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभु के सिमरन से दूजा
0: प्रभु के सिमरन त्रित स्नानी
1: प्रभु के सिमरन
0: प्रभु के सिमरन होए सो भला
1: प्रभु के

0: मन की मल जाए।
1: अमृत
0: नाम जी बसे साथ की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना।
0: सबको सिमरे से धनवंते,
1: सबको सिमरे से पदवंते।
0: सबको सिमरे से जन परवान,
1: सबको सिमरे से पुर प्रधान।
0: सबको सिमरे से बे मोहताजे,
1: सबको सिमरे से धर्म के राजे।
0: सबको सिमरे से सुखवासी,
1: सबको सिमरे सदा विनाशी।
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
1: नानक जन की मंगे रवाला।
0: सबको सिमरे से परोपकारी,
1: सबको सिमरन ते सत बलहारी।
0: सबको सिमरे से मुख सुहावे,
1: सबको

0: कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लगे दुपाए
0: हर सिमरन बस जति दाते
1: हर सिमरन नीचो गुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना
1: सिमर सिमर कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सगल कारा।

0: बुरा मिटा मैं
1: के जगत सिर साजना
0: दुख दुजन सम दृष्टि
1: नानक पाप नहीं ले पाप
0: धर को धन तेरो
1: नाम निताने को नौ तेरा ताम
0: निमाने को प्रभु तेरो मां।

0: पर विकार को धावे,
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे,
0: मिथ्या तन्नै परोपकार,
1: मिथ्या वास ले निकारा,
0: पूजे मिथ्या सब भय,
1: सफल ने नान कर नाम ले,
0: की साकत की आर
1: जा, साधना का हो वसुचा,
0: नाम बिना तन
1: अन्न मोकावत

सात के संग शोभा सुर देवा सात संग अमृत गुण गायन नानक सात के संग सफल जन्म दर्शन बेट तो निहाल सात के संग नरक पर रे सात संग

0: बृहस्पति
1: कोट होए पुजारी
0: कई कोटाचार व्यवहारी
1: कोट में तीर्थवासी
0: कई कोट बंद में उदासी
1: कोट में
0: कई कोट तपेसर होते
1: कोट आत्म ध्यान
0: कई कोट कम का विचारे
1: कोट नाम तो नाम
0: नानक कते का अंत न पावे
1: कोट में अभिमान
0: कई कोट अंत ज्ञानी
1: कोट उत्पन्न कट हो
0: कई कोट में कातम निकोरे
1: कोट पर दर्प को
0: कई कोट पर दुख ना करे
1: कोट माया शर्मा।

आत्म है पार ब्रह्म लाते तिनको मिलियो प्रभ अविनाश पार ब्रह्म तिन लाकारंग है।

0: के क्या हो आवे
1: जो तिस पावे सोई करावे
0: के हाथ होयता सब कुछ रहे
1: जो तिस पावे सोई करे
0: अनजानत बिख्या न राचे
1: जे जानत अपना बचे
0: घर में भूला दे जिस धावे
1: निमक माए चार कुल फिर आवे
0: कृपा जिस अपनी गति बदे
1: नानक तेज नाम मिले
0: चिन्मय नीच कीट गौराज
1: पार ब्रह्म।

0: बसे कबो सोखरक संग हसे
1: कबो नींद चिंद बिहार
0: कबो उपकाश प्याल
1: कबो बताप ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावण हार
1: कबो निरुत करे भव भाती
0: कबो सोए रहे दिन रात
1: कबो महाक्रोध विकराल
0: कबो सरप की हो त्रवाल
1: बहे बड़ राजा
0: कबो बेकारे नीच का साजा
1: कीर्ति माही आवे
0: कबो पला

दाग के संता संचाल यो व्यापार बिरला व्यापार साध सेवा बड़ा की पाई अनेक बिगंते साधु साधु संतो

जुग जुग अटल नाम बाणी के बोहित कलयुग के जहाज बाणी शब्द अवतार पतित पावन भगत वशल करुणा निधान सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन तन बाजा वाले पिता दशमेश पिता खड़गेश पिता सरबंस दानी धन सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तिन्ना दे महान पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब जी विखे पन मथरा कछ भेद नहीं।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे प्रजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड बिडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी समाज संजो विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सा

कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान विमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत

लक्ष्मी संग्राम छुटे प्राण लक्ष्मी तिलक ज्ञान ध्यान प्रिय पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक

सतगुरु नो पुछकै बहरे करे निवास सत्सबना होए दारू पाप नित होए नानक खाने बेनती।

0: तक पहुँच किए बाम बटे आए कोई बुकरारिन खाया सबको आखे पाए हुई प्राणा सुखिए पाए होर नानक न टुटई जेत होवे जोर महला पहला
1: नाय मनी है पतूप जैसा लाहे सच सू दर गए अंदर पाए तक न टूटस पूत महला पहला
0: तक न इंद्री तक न नारी पलके थुपवे दाढ़ी तक न पैरी तक न